0: अल्लाह ताला जल्ले शानहु और उसके फरिश्ते दरूद शरीफ भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम।

दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस नाते पाक को जिस अंदाज़ में पढ़ा है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। फिर भी दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की ये नाते पाक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।

गा रहे, दो दुखियारी पंछी बिछड़े जा रहे. लिसन टू दिस सॉन्ग ऑफ फेयरवेल एज वी सिंग टुडे. टू अनहैप्पी बर्ड्स आर नाउ गोइंग सेपरेट पाथ्स. फेसिंग द इनेविटेबल, दीज टू बर्ड्स लीव ईच अदर विद टीयर्स इन देयर आईज आफ्टर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम्स. These two individuals journey away in different directions, but the cruel world can never understand their pains. Today, they are reflecting on their happy days of old.

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी है, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे

यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास हो गया।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।